जी दोस्तों सारे दोस्तों का दुआबा रेडियो के मंच उत्ते निघा स्वागत है। लैके हाजिर हाँ तुहाडी कचहरी च फिर तो एक बार नवा नवेला प्रोग्राम जिंदगी नामा हाल दुनिया। आप सब नू आदाब सलाम नमस्ते ते प्यार भरी निकी हाथ जोड़ के सत श्री अकाल। दोस्तों उम्मीद करदे आ सब ठीक ठाक होणगे ते हुण तों लैके तकरीबन दो सवा दो घंटे तुहाडा मेरा राबता इसे तरह बरकरार रहेगा ते गल्लां बातां देश ते दीआं खबरां अज दा विचार ते नाल दी नाल किताब पंजाब जिस दे विच आपां गल्लबात करांगे। पिछले दिनां दे विच वी उस दे विचों बातचीत कर रहे हां ते उस दी शुरुआत कीती होई है। किताब पंजाब औरंगजेब तो माउंट बैटन तक का इतिहास जिहड़ा सांझा कर रहे हैं तुहाडे नाल ते लड़ीवार भाग छेवां अज तुहाडे नाल उहदी सांझ पावांगे ते उहदे विचों गल कोई नवीं भी सुणावांगे। लाइना तुहाडे लई खुल्लियां रहणगियां प्लस 358 44 976 19 बार स्टूडियो का नंबर है तुहाडे लई जिहड़ा नंबर भी

मैनू जानी ना तिला बौकर बन के हूं जदेऊं जे आकड़ छड़ी ना अपनी तैनू नक्शे तो पूंज देऊं जे आकड़ छड़ी ना अपनी तैनू नक्शे तो पूंज देऊं मैं पखियां दी झल नहीं

गल तेनू साड़ी मननी ही पैनिया, आकड़ जो तेरी पननी ही पैनिया। गल तेनू साड़ी मननी ही पैनिया, आकड़ जो तेरी पननी ही पैनिया। असी दिन रात ले

करने लगा के पंजाब देख ले, कई कई दिन बेहिसाब देख ले। तारने लगा के पंजाब देख ले, कई कई दिन बेहिसाब देख ले।

ज्ञान दी जोत जगावन दे लई अंदर चात लगाउणा चंगा, मगर किसे दे लगन नालों अपना राह बनाउणा चंगा। मन बता दे पले दी खातर जावर ना

काम आना किसी के है एक बंदगी, एक बार ही मिलती है ये जिंदगी। काम आना किसी के है एक बंदगी, रोने वालों को जो भी हंसा था रे, रोने वालों को जो भी हंसाता रहे।

यार दिलिये खैर मना लैनी आगे सच के सिंह सरदार असी वाले अथरे हाँ साडिया मूड डिपेंड ने मत्ता असी वाले अथरे हाँ साडिया मूड डिपेंड ने मत्ता सदके मुड साडे दे आगे करके वेलियां सत्था सदके।